मासूम बालों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मैं

जमी पर शराब देते हुए ये मुस्कुराती हुई चीज मुस्कुरा के मिला। सरूर चीज की मकदार पर नहीं मौकूफ, शराब कम है, शराब कम है, शराब कम है, पिलाना फर्ज था।

सरीही रंग नहीं। मिया शराब का कोई अपना सरीही रंग नहीं, शराब तजिया एहतसाब करती है। शराब का कोई अपना सरीही रंग नहीं, शराब तजिया एहतसाब करती है। जो अहले दिल है बढ़ाती है आबरू उनकी, जो बे शऊर है उनको खराब करती है। हाय गंगा।

तैर के माबेन जगह खाली है, काबा और तैर के माबेन जगह खाली है, क्यों ये वीराना रहे या क्यों ना मैं खाना बने हाय।

के बजमे रिंदा सरे अर्श झूमती है वो शराब आज साकी तेरे घर बरस रही है। हाय गंगा।

0: खुशबू मदीना में फील इस अव्वल दिन मनाई जाएगी जिसमें खुश नसीबों को दिए जाएंगे। का वसीम था इसमें अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। हम हैं कि इस महफल में शिरकत फरमा कर हासिल फरमाएं।
1: सुन रहे FM।

खुशबू मदीना में फील इस अव्वल दिन मनाई जाएगी जिसमें उम्र खुश नसीबों को दिए जाएंगे। ट्यूसडे का वसीम तो इसमें अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। हम हैं कि इस महफिल में शिरकत फरमाकर हासिल फरमाएं।

0: छोड़कर जा रहे हैं।
1: देखिए, 20 दिन से हम मदद ही कर रहे हैं, हम आपको जानते भी नहीं है और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर, ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
0: चलो उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

खुशबू मदीना में फील इस अव्वल दिन मनाई जाएगी जिसमें उम्र खुश नसीबों को दिए जाएंगे। का वसीम इसमें अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। हम हैं कि इस महफल में शिरकत फरमाकर हासिल फरमाएं।

खुशबू मदीना मैं फील इस अव्वल के दिन मनाई जाएगी जिसमें उम्र खुश नसीबों को दिए जाएंगे। ट्यूसडे का वसीम तो इसमें अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। हम हैं कि इस महफिल में शिरकत फरमाकर हासिल फरमाएं।

vegetable sarve. UK. You can जाते हैं थ्रू तो पे कॉल कर सकते हैं 4700593 पे. आते हैं या कोई करते हैं तो हम का नाम है बाकी बूंदे. पर आया तुम्हारे जैसा था तुम्हारे जैसा था. वो तुम्हारे जैसा था तुम्हारे जैसा था. जब दरवाजे महसूस हुआ

0: 3066677 पर। नहीं देखा आंखों में उतर कर नहीं देखा कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा एक दिन में कभी घर नहीं देखा मंजर नजर है जिस दिन से नजर है आंखों में मेल का पत्थर नहीं देखा ये फूल कोई विरासत में मिले ये फूल कोई विरासत में तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर देखा मैंने यारों मैंने फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा
1: क्या
0: महबूब का हो के बुजुर्गों की जमीने महबूब ने जो छोड़ उसे मुड़कर नहीं देखा
1: क्या कहने
0: खत ऐसा लिखा कि नगी है खत जुड़े हैं वो हाथ जिसने कोई जेवर देखा
1: बा, बा, बा,
0: जी बिल्कुल

0: आपकी। जी सना, कुछ
1: जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी की बहुत ही प्यारी सी गजल है।
0: जी
1: से वहशत उससे भी थी, जिक्रे शबे फिराक से वहशत उससे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उससे भी थी। मुझको शौक था नए चेहरों की दीद का, मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उससे भी थी।
0: क्या कहना।
1: छत के शहर में घूम वो शख्स मुझसे बिछड़ के शहर में घुल मिल गया शख्स, हालांकि शहर भर से अदावत उसे भी थी।
0: क्या कहना।
1: मुझसे बिछड़ के जब का था, वरना हर एक सांस कयामत उसे भी थी। मुझसे कहने का यूं ही भी हाले दिल, मोहसिन से कहने का यूं ही हाले दिल, दर्श एक से भी थी।
0: क्या एक गीत सीख ले तो करवाएंगे।

0: आप से पहले और उसी के साथ ही आपसे हम इजाजत, हमारे पास तकरीबन 2-3 मिनट्स हैं, अगर भी कुछ वक्त है 0 30 स्टूडियो का फोन जी।
1: अलविदा, मुझे अलविदा नहीं कहना, मुझे तुम अलविदा नहीं कहना। मुझे अब खौफ आता है
0: वाह वाह,
1: कि जैसे अलविदा कहने से हम फिर मिल नहीं सकते, कि जैसे अलविदा कहने से हम फिर नहीं मिल सकते, कि जैसे उसके कहने से सभी रिश्ते सभी नाते यकायक टूट जाएंगे। मगर मैं तुमसे की हर उम्मीद को दिल में मगर मैं तुमसे कि हर एक उम्मीद को दिल में हमेशा रखना चाहूंगी, तुम्हें खोना ना चाहूंगी, तुम्हें फकत इतना चाहूंगी कि बस तुम अलविदा नहीं कहना, मुझे तुम अलविदा नहीं कहना।
0: अलविदा एतवार से बड़ा ही खूबसूरत आपने पेश किया, और अगला हम सब पे अपना फर्ज से अपने मेजबान सैयद हसन
1: एंड सना से
0: अल्लाह
1: फेस, अल्लाह
0: हाफिज।
1: हाफिज।

0: चलो तुम्हारा शैतान है। इन्होंने बात बहुत बोला मगर मैंने पहली नजर में पकड़ लिया था, है कि नहीं
1: जी दास?
0: देखा भाई नहीं
2: जी दास।
0: चलो हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झटका होती है।